सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधन शाही वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदर वर्धनो वर्धमानश्च विविक्त श्रुति सागर सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्ट प्रकाशन ओजस्तेजो द्युतिदर प्रकाशात्मा प्रतापन रुद्र स्पष्टाक्षरो मंत्रश्चंद्रांशुर्भास्कर द्युति अमृतांशुर्भवो बाणः शशबिन्दु

वित्त गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो द्रुवः परर्दिक् परमस्पष्ट तुष्ट पुष्ट सुबेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तमः वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणद प्रणव पृतुः हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरोक्षजः ऋतुसुदर्शन काल

विनयो जय सत्य संदो दाशार्ह सात्वताम पति जीवो विनयता साक्षी मुकुंदो मित विक्रमः अंबो निधिर नंदात्मा महो दधिशयोंतकः अजो महार्ह स्वाभाव्यो जिता मित्र प्रमोदनः आनंदो नंदनो नंद सत्य धर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदश्रदशाध्यक्षो महाश्रृंगार।

ॐ नमः सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नमेति व्यासोवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वास

मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानन ओं नमैति ब्रह्मोवाच नमोऽस्तु मनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिण ओं नमैति संजयोवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं MOPCRS 107.8। आप हमारा समाज हमारा गौरव। आज हम हिंदी के महत्व के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम शुरू करते हैं तृप्ति जैन से, जो हिंदी के बारे में एक सुंदर सी कविता बोलना चाहती है।
1: नमस्कार, मेरा नाम तृप्ति जैन है। मैं समाज विज्ञान विभाग से हूँ। मैं MOP की एक छात्रा हूँ। तो आज मैं हिंदी के बारे में कविता सुनाने जा रही हूँ। तो कविता है, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। तो इस पहले पद से हम ये जान सकते हैं कि हिंदी की क्या गौरवता और कितना महत्व है हमारे समाज में। दूसरा पद, हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके गर्भ से रोज नई कोम्पले फूटती है, ऐसी कामधेनु धरा है हिंदी, जिसने गुलामी में क्रांति की आग जलाई, ऐसे वीरों की प्रसूता है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। तो इस पद में भी हमको हिंदी एक कामधेनु धरा के रूप में दिखाई देती है। तो अगला पद है, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। तो हम लोगों को हिंदी के ऊपर गर्व करना चाहिए कि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए। हिंदी को सम्मान देना और दिलाना दोनों हमारा कर्तव्य है। विदेशी शासन खत्म हो गया तो हमको अब उन बेड़ियों को तोड़कर अपने दिल से हिंदी को अपनाना चाहिए, खुले आसमान में जाना चाहिए, लेकिन धरती को प्यार को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हिंदी हमारी मातृतुल्य है, इस पर हमें अपनी जिंदगी को न्योछावर करना है। धन्यवाद।
0: बहुत बढ़िया तृप्ति जैन, बहुत अच्छे कविता आपने चुनी है आज के दिवस के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं नंदिता, जो कि समाज विज्ञान से हैं, उनका वो कुछ शब्द कहना चाहती है हिंदी दिवस पर। नंदिता, आपके हाथ पर।
2: नमस्कार, मैं नंदिता समाज विज्ञान विभाग से हूँ। मैं MOP की छात्रा हूँ। आज मैं हिंदी दिवस और हिंदी के महत्वता के बारे में बताने वाली हूँ। प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। यह दिन हिंदी को प्रचार तथा हिंदी के सम्मान और लोगों के मध्य इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। वर्तमान समय में हिंदी दिवस का महत्व इसलिए और भी बढ़ा जाता है क्योंकि हमारे देश में हिंदी प्रतिदिन हिंदी पर अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं है जब यह हमारे अपने ही देश में विलुप्तता के कगार पर पहुंच जाएगा। भले ही हिंदी भारत की राजभाषा हो, पर आज के समय में भारत में अंग्रेजी का उपयोग तेजी से बढ़ता जा रहा है, और वह दिन दूर नहीं है जब यह हिंदी को पीछे छोड़ देगी। वर्तमान परिदृश्य में भारत में लोग सामूहिक जगहों तथा मंचों पर हिंदी बोलने में संकोच महसूस करते हैं। नहीं, वही दूसरी ओर दलढ़ेक से अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं, भले ही वह अंग्रेजी टूटे फूटे नहीं बोले। वैसे तो कई सम्मानित लोगों हिंदी दिवस जैसे अवसरों पर हिंदी का प्रचार प्रचार और उपयोग के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, पर यह सम्राट तथा उच्च वर्ग के ही लोग हैं जिन्होंने आज के समाज में हिंदी के प्रति द्रोहिरी मानसिकता को जन्म दिया है। क्योंकि जब कोई शिक्षित तथा सम्मानित व्यक्ति कोई कार्य करता है तो लोग भी आंख मूंद कर उनका अनुसरण करता है, क्योंकि उच्च वर्ग द्वारा सदैव से ही अंग्रेजी का वरीयता दी जाती थी, तो मध्यवर्गीय लोग ने भी इसे अपनाना शुरू किया और अंग्रेजी को ही तरक्की का पर्याय माना लिया। इसी के कारण लोगों ने अपने बच्चों को शिक्षा में अंग्रेजी को वरीयता दी तथा उन्होंने अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ाने लगे। हिंदी दिवस और राजभाषा सप्ताह जैसा अवसरों पर हम सबको मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक लोगों तक हिंदी के उपयोग के महत्व को समझा सके। इस दिन हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम हिंदी वाद विवाद तथा भाषा कार्यक्रमों में जाए तथा अपने साथ अपने अन्य परिवार के सदस्यों कतौरे से छोटे बच्चे को भी ले जाए ताकि वह बचपन से ही हिंदी भाषा का महत्व समझ सके। हमें इस बात की अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए कि हम सार्वजनिक स्थलों कार्यालयों और अन्य जगहों पर हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग करें। इस तरह से न सिर्फ खुद हिंदी का उपयोग को बढ़ावा देंगे जो कि इसके विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा भी हिंदी का उपयोग को बढ़ाने के लिए सरकारी कार्यों में हिंदी को अनिवार्य किया जाने जैसे फैलने लिए जा सकता है। हमें लोगों को यह समझाने की आवश्यकता है कि हिंदी हमारी राजभाषा है और इसे सही ढंग से लिखाने तथा पढ़ाने की ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। हमें लोगों को यह समझाना होगा कि कोई भी देश बिना अपने राजभाषा के ज्ञान के बिना तरक्की नहीं कर सकता है। लोगों को समझाना होगा कि अंग्रेजी बस एक विदेशी भाषा है ना कि तरक्की पर्याय। इसके विपरीत हिंदी हमारी शक्ति है। हम अपने इन छोटे छोटे प्रयासों द्वारा समाज में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं जो आने वाले समय के हिंदी के विकास में अपना महत्वपूर्ण स्थान दे सकता है। वर्तमान समय को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि मात्र कुछ लोगों के प्रयास से हिंदी के ऊपर मंडराता यह संकट नहीं दूर किया जा सकता है। इसके लिए हमें सम्मिलित प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हिंदी दिवस जैसे अवसरों पर हम हिंदी का प्रचार प्रचार करके भी इसके उपयोग को बढ़ाने में अपना सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद।
0: बहुत बढ़िया नंदिता।
3: हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु जी ने देश की गरीबी पराधीनता शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपना साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे और गिरधरदास उपनाम से कविता लिखा करते थे। शिक्षा की व्यवस्था प्रथा पालन के लिए होती रही। संवेदनशील व्यक्ति के नाते उनमें स्वतंत्र रूप से देखने सोचने समझने की आदत का विकास होने लगा। पढ़ाई की विषय वस्तु से उनका मन उखड़ता रहा। क्वींस कॉलेज बनारस में प्रवेश लिया। 3-4 वर्षों तक

0: जी की यह विशेषता है कि जहां उन्होंने ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर कविता लिखी, वहां उन्होंने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को भी अपनाया। भारतेंदु की रचना धर्मिता में दोहरापन दिखता है। कविता जहां वे ब्रज भाषा में लिखते रहे, वही उन्होंने बाकी विधाओं में सफल हाथ कड़ी बोली में आजमाया। सही मायने में कहते तो भारतेंदु आधुनिक कड़ी बोली गद्य के उन्नायक हैं। भारतेंदु जी के काव्य की भाषा प्रधानतः ब्रज भाषा है। उन्होंने ब्रज भाषा के अप्रचलित शब्दों को छोड़कर उसके परिकृष्ट रूप को अपनाया। उनकी भाषा में जहां तहां उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी जाते हैं। उनके गद्य की भाषा सरल और व्यवहारिक है। मुहावरों का प्रयोग कुशलता पूर्वक हुआ है। उन्होंने लगभग सभी रसों में कविता की है। श्रृंगार और शांत रसों की प्रधानता है। श्रृंगार के दोनों पक्षों का भारतेंदु जी ने सुंदर वर्णन किया है। उनके काव्य में हास्य रस की भी उत्कृष्ट योजना मिलती है। अलंकारों का प्रयोग भारतेंदु जी ने काव्य में सहज रूप से हुआ है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और संदेह अलंकारों के प्रति भारतेंदु जी की अधिक रुचि है। शब्दालंकारों को भी स्थान मिला है। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि सभी क्षेत्रों में उनकी देन अपूर्व है। भारतेंदु जी हिंदी में नवजागरण का संदेश लेकर अवतरित हुए। उन्होंने हिंदी के स्वरंगीन विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया। भाव, भाषा और शैली में नवीनता तथा मौलिकता का समावेश करके उन्हें आधुनिक काल के अनुरूप बनाया। आधुनिक हिंदी के वे जन्मदाता माने जाते हैं। हिंदी के नाटकों का सूत्रपात भी उन्हीं के द्वारा हुआ।
1: अभी मेरे साथ सौरभ कुमार तिवारी जी हैं, जो बीई कर रहे हैं। नमस्ते सौरभ जी, कैसे हैं आप?
2: जी नमस्कार, मैं अच्छा हूँ।
1: और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है?
2: जी बहुत अच्छा चल रही है।
1: आप ये बताइए कि हिंदी का क्या महत्व है आपकी रोजी जिंदगी में?
2: जी हिंदी का मेरे जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत है, क्योंकि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि मेरा मन के अंदर के सारे विचारों को व्यक्तिगत रूप से दूसरों के सामने प्रस्तुत करने का एक बहुत ही अच्छा एक जरिया है। इस वजह से मेरे लिए हिंदी बहुत ज्यादा अहमियत रखती
1: है। आप किसके साथ हिंदी में बात करते हैं, जहाँ आप अपनी मन की बात या जरिया आप बताते हैं?
2: जी हाँ, मैं अपने सभी मित्रों और अपने माता पिता और मेरे आसपास जितने भी ज्यादातर लोग हैं, सबके साथ मैं हिंदी में वार्तालाप करता हूँ। इस वजह से हिंदी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत की भाषा है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपकी कोई ऐसी पसंदीदा लेखक या कवि हैं जिनको आप जिनसे आप प्रेरित होते हैं, या उनकी कविताएं रचनाएं पढ़ के आपका मूड अच्छा हो जाता है? कोई ऐसी कवि हैं?
2: जी हाँ, ऐसे एक कवि एक लेखक हैं जो जिनको पढ़ के मैं बहुत ही आनंदित हो जाता हूँ। उनके कहानियां बहुत ही अच्छे होते हैं। उनका नाम मुंशी प्रेमचंद जी है।
1: हाँ, उनकी कहानियाँ तो बहुत ही प्रसिद्ध है। आपकी कोई ऐसी उनकी कोई ऐसी कहानी जो आपको अच्छा लगती है, कोई ऐसा है?
2: जी हाँ, उन्होंने काफी सारे समाज में चल रहे गलत विचारों के ऊपर बहुत ज्यादा उन्होंने लेखन किया है। उसमें से कुछ कहानियाँ हैं, बड़े घर की बेटी, सती, ये सब मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आती है।
1: हाँ, हिंदी आप तो कुछ ज्यादा ही महत्व देते हैं हिंदी भाषा को, तो आप ये बताइए कि हिंदी को भारत का राष्ट्रभाषा बनाया गया है, क्या वो सही है या गलत है?
2: जी हाँ, ये मेरे हिसाब से बहुत ही सही काम किया गया है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है ये 1949 में भारत की राष्ट्रभाषा घोषित की गई थी, और वो पूरे देश भर के सभी लोगों के द्वारा बातचीत करके निर्णय लिया हुआ एक चीज है और सभी लोगों ने

0: मिलकर ये निर्णय लिया था कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा होगी। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हिंदी बहुत सारे देश के राज्यों में प्रचलित है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। भारत में लगभग 70 से 80% लोग हिंदी बोलते हैं, वहीं इसके उलट बहुत कम लोग ही अंग्रेजी भाषा जानते हैं या फिर बाहर की दूसरी भाषाओं को ज्यादा जानते हैं जी। और हमारे देश के अलग अलग राज्यों में उनके अलग अलग भाषा हैं, लेकिन एक दूसरे के राज्य में ये इनका चलन नहीं हो पाता है। हिंदी एक माध्यम है जिनसे सब लोग वार्तालाप कर सकते हैं आसानी से।
1: तो आपका यह कहना कि हिंदी से राष्ट्रता मिलती है, एकता का भाव मिलता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, तो आप तो इस बात से आप ये भी सहमत हैं कि अंग्रेजी का प्रभाव कुछ ज्यादा है या कम है हिंदी भाषा पर?
0: अंग्रेजी का ज्यादा प्रभाव बनाने की कोशिश बहुत बार की जाती है, क्योंकि हम अपने देश के अंदर रह के अपने आप को आगे बढ़ाने की जगह हम लोग कोशिश करते हैं कि हम विदेशों में जाके अपने आप को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा एक गलत धारणा सबके अंदर है। हम अपने देश में भी रह के और हमारी भाषा को भी हम लोग आगे बढ़ा के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इंग्लिश का महत्व ज्यादा दिखा के हिंदी को कमजोर करने की बहुत सारी कोशिशें होती हैं।
1: हाँ, ये तो हमें भी देखने को सुनने को मिलता है। बहुत अच्छा लगा सौरभ जी आपसे बात करके। यही उम्मीद करते हैं कि आगे आपसे ऐसे ही मौका हमें भी ऐसा मौका मिलता रहे आपसे बातें करने के लिए और कुछ ज्ञान चर्चा करते रहे।
0: जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। धन्यवाद।
2: आप लोगों को पता है कि क्या मुझे बहुत दिनों से किसी गृहिणी के साथ चर्चा करना था, शायद आज ये मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। चलो आज हम मिलते हैं वैजयंती जी, जो एक साधारण गृहिणी हैं, जो अपनी गृहस्थी को बखूबी से निभाती है। नमस्ते वैजयंती जी।
3: नमस्ते।
2: कैसी हैं आप, कैसा चल रहा है आपका गृहस्थी?
3: हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है।
2: ठीक है, तो आपका क्या कहना है हिंदी भाषा पर, उसका महत्व आपकी रोजी जिंदगी में क्या है?
3: हिंदी भाषा हमारे जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने जमाने लोगों को हिंदी नहीं आती थी, आजकल के कलयुग में हिंदी कॉमन भाषा हो गई है, जो हर एक लोगों को हिंदी आती है। वे अपनी जाति की भाषा भी भूल जाते हैं, इसलिए आप लोगों से कहूंगी कि सब लोग हिंदी भाषा को सीखेंगे और अपनी भाषा को भी सम्मान देंगे, उसे अपने जीवन में भी उतारेंगे।
2: हाँ, आप जैसे बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। हिंदी को हम सम्मान देंगे, मान देंगे और उसका उपयोग भी करेंगे। आपको ये तो पता ही होगा कि हिंदी को तो भारत का राष्ट्रभाषा बनाया गया है। क्या ये सही है, गलत, या इसको लागू किया गया वो अच्छा ही है?
3: जी हाँ, मुझे बिल्कुल पता है ये बात सही है। हिंदी भाषा को राष्ट्र का भाषा बताया गया है, क्योंकि हिंदी भाषा से हम संस्कृत सीखते हैं और कई कविताएं और पहेलियों भी बनाते हैं। हिंदी भाषा हमारी पहचान है। हिंदी भाषा से कई तरह का हमें ज्ञान होता है।
2: हाँ, ज्ञान तो मुझे बहुत मिलता है हिंदी भाषा से। ज्ञान बांटते भी हैं, लेते भी हैं और उसका प्रचार भी करते हैं। आपका कोई ऐसा पसंदीदा कवि या लेखक है जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, प्रेरणा मिलती है आपको?
3: जी हाँ, हरिवंश राय बच्चन की कविताएं मुझे बहुत प्रेरित करती है। उनकी कविताएं मुझे जीने की उम्मीद देती है, और क्योंकि जो भी वे लिखते हैं हमारे रोजी जीवन से संबंधित होते हैं, उसे इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।
2: हरिवंश राय बच्चन, उनकी कविताएं तो बस पढ़ते दिल खुश हो जाता है, बहुत बढ़िया लिखते हैं। मेरा भी पसंदीदा कवि है वो। आप क्या कहना है कि अंग्रेजी भाषा का क्या प्रभाव पड़ा है हिंदी भाषा पर?
3: 10वीं कक्षा तक ही पढ़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे बहुत बचपन से हिंदी पढ़ना बहुत पसंद है। मेरी बहुत अच्छी सब्जेक्ट हिंदी है। मैंने सबको यही सिखाया, अपने बच्चे को भी, हिंदी बोलना सीखो। हिंदी से हमें बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे हमें जीवन में बहुत योगदान होता है। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगी, अंग्रेजी एक साइड में होता है सब्जेक्ट, लेकिन हिंदी हमारी बहुत बड़ी महत्व भाषा, हिंदी हमारी संस्कृत भाषा है। इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है और हमारे ज्ञानों का विकास भी होता है। हम लोग समझते हैं हिंदी तो क्या सिंपल, ये सिंपल की बात नहीं है। हमें हिंदी बोलना बहुत जरूरी है, हम अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए हमें।
2: धन्यवाद वैजयंती जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वैजयंती जी, क्या आप कोई संदेश देना चाहते हैं इस युवा पीढ़ी को?
3: जी हाँ, मेरा संदेश यह है कि सब हमारी हिंदी भाषा का प्रयोग करें, उसे ना भूले, उसका सम्मान करें, हम अपनी भाषा का एक महत्वपूर्ण जीवन में उतार दें। यही मैं आपसे निवेदन करूंगी कि सब लोग हिंदी भाषा को सीखें और उनकी ज्ञान की का विकास करें। यह कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद।
2: जय हिंद वैजयंती जी, बहुत बढ़िया कहा आपने, ऐसे संदेश मिलके हम मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपको। ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ और भी ऐसे बातें करें, चर्चा करने के लिए मौका मिले। धन्यवाद। अभी हमारे साथ वैशाली जी हैं जो कि सीए पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई सीए के बिजी शेड्यूल में हमसे बात करने के लिए उत्साहित हैं। उनको ना हिंदी का ज्ञान कुछ ज़्यादा ही है, वो हमारे साथ कुछ शब्द बांटना चाहते हैं। नमस्ते वैशाली जी, आप कैसी हैं?
4: नमस्ते, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो?
2: मैं अच्छी हूँ। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई?
4: मेरी पढ़ाई तो बिल्कुल अच्छी चल रही है।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप ये बताए कि हिंदी का क्या महत्व आपकी रोजी जिंदगी में?
4: हाँ, सबसे पहले हिंदी भाषा का महत्व के बारे में बोला जाए तो बहुत कम है। इस समय पर छोटे से बड़े लेकर आजकल अंग्रेजी भाषा चुनते हैं, क्योंकि यह मजबूरी बन गया है कि जो भी बोलना है अंग्रेजी में बोलना है। अगर छोटे बच्चे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कहते हैं तो हम सब बहुत आश्चर्य हो जाते हैं और हर्षित भी हो जाते हैं। और रही बात युवाओं की, तो उनके जीवन को बनाने के लिए उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो अवश्य हिंदी में संवाद ना करें, मतलब अंग्रेजी ही बोले ताकि उनकी जीवन बन जाए। पूरी तरह से यह देखा जाए तो वास्तव में हिंदी का महत्व तो मिट गया है।
2: आपके बात से मैं 100% सहमत हूँ वैशाली जी। आपका कोई ऐसा पसंदीदा लेखक या कवि हैं जिनकी रचनाएं आपको प्रेरित करती हैं या जिनको पढ़ने से आपको आनंद मिलती है?
4: हाँ, मुझे तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत पसंद है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, उन्होंने क्या स्पष्ट किया है, निज भाषा उन्नति रहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को शूल। मतलब विश्व के सभी देशों को अपनी एक भाषा ही ऐसी है जो संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की क्षमता रखती है। मतलब हम लोगों को हिंदी भाषा का उपयोग करना चाहिए। अंग्रेजी देशों में अंग्रेजी नहीं बोला जाता है, बल्कि उनकी मातृभाषा, उनकी जो भाषा है वो बोला करते हैं।
2: भारतेंदु जी ने तो बहुत बढ़िया ही कहा है, शायद हमें आज से भारतेंदु जी की कविताएं पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा कि हिंदी को तो भारत का राष्ट्रभाषा बनाया गया है। क्या इसे ही तरह से लागू किया गया है या कुछ अच्छे तरीके से किया जा सकता था?
4: हाँ, हिंदी तो राष्ट्रभाषा घोषित कर दिए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देश की प्रगति के गर्भ में राष्ट्रभाषा हिंदी का विशेष महत्व रहा है। एक समय था जब देश में संवाद की भाषा देशवाणी अर्थात संस्कृत थी। यदि भारत की इतिहास को देखें तो पता चलता है कि हिंदी किसी न किसी रूप से अपने सहोदर भाषाओं को अपना सहयोग प्रदान करती है। तो समय के साथ साथ भाषा भी करवट बदली है और सहयोग प्रदान करती रही है। मतलब हम लोगों को हिंदी भाषा उपयोग करना चाहिए। अंग्रेजी में कौशलता बढ़ाने के लिए कई केंद्र में जाते हैं, बल्कि कई केंद्र खुले भी हैं जहां पर अच्छी अंग्रेजी बोलने का इतिहास प्रयास दिया जाता है। बस हम लोग साधारण सा हिंदी बात करने में हिचकिचाते हैं। हाँ, लेकिन दुनिया में कई लोग हैं जो हिंदी बात करने की चाह रखते हैं।
2: आपके बातों से यही लगता है कि आप भी हिंदी में बात करना पसंद करते हैं और आप बदलाव भी चाहते हैं कि लोग हिंदी में संवाद करना शुरू करें, उसका ज़्यादा उपयोग करें। हमें भी सूचना दीजिएगा अगर आपको ऐसा बदलाव ले रहे हैं तो।
4: हाँ ज़रूर सूचना दूंगी और करूंगी भी।
2: बहुत अच्छा लगा वैशाली जी आपसे बात करके। आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को?
4: हाँ बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हिंदी का उपयोग करें, अंग्रेजी अपनी जगह है और हिंदी अपनी जगह है, अपने पुरानतम को मिटाना दे बस।
2: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम अपने पुरातत्व को ऐसे बना के रखेंगे, साथ ही साथ अपना भी विकास करेंगे। धन्यवाद वैशाली जी।
4: धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। धन्यवाद।
2: जरूर जरूर। आपने जो भी कहा 100% सही कहा है। अभी हम जा रहे हैं श्रीनिधि के पास जो गणित पढ़ रही हैं एमओपी महाविद्यालय पर। आज श्रीनिधि एक कहानी सुनाने वाली है हिंदी के महत्व पर। श्रीनिधि
5: नमस्कार, मैं श्रीनिधि हूँ। मैं गणित विभाग में पढ़ती हूँ और मैं एमओपी महाविद्यालय की छात्रा हूँ। आज मैं आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता महाभारतेंदु हरिश्चंद्र के एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक अद्भुत अपूर्ण स्वप्न। आज रात्रि को प्रयाग पर जाते ही अचानक आंख लग गई। सोते में सोचता क्या हूँ कि इस चलामय शरीर का कुछ ठीक नहीं। इस संसार में नाम स्थिर रहने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति धुप मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मस्त हो जाएगा, कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएगा, आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे हस्ती न आवेंगे, केवल कीर्ति कमल संसार सर्वर में रहे व ना रहे, और सब तो एक न एक दिन तप्त तवे की बूंद हुए बैठ है। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचारा कि कोई देवालय बनाए कर छोड़ जाऊं, परंतु थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं, और वह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यह अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख्य फेर कर भी कोई न देखेंगे। इस कारण इस विचार का परित्याग करना पड़ा। फिर पड़े पड़े पुस्तक रचने की सूझी, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि क्रिटिक काट कर आधी से अधिक निगल जाएंगे, यश के स्थान शुद्ध अपश्य प्राप्त होगा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचार से काम न चलेगा, तब लाडिली नींद को तो रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की समाधि लगा गया। यहाँ तक 61 व 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत में एक मित्र ने बल से अति उत्तम बात की पूछ हाथ में पड़ गई। स्वप्न ही में प्रभात हो ही पाठशाला बनाना का विचार फिट गया, परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 घड़ी ही मुहारे निकली। आप जानते हैं इतने में मेरी अपूर्ण पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था, निदान अपने इष्ट मित्रों की सहायता लेने पड़ी। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों का ठोर मुँह कर चिनवा लेते तब भी 10-5 रेल रुपयों और खर्च पड़ते, होते होते सब हरी कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें जितना संसद विषय हुआ और वह तुझे स्मरण नहीं है, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। बिन्ने को तो एक क्षण में सब बन गया था, परंतु उसके काम जोड़ने में पूरे 35 वर्ष लगे। जब हमारी अपूर्ण पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदारों में से खोज खोज कर अनेक पंडित बुलावाए जिनकी संख्या 0.1 से अधिक नहीं है। इस पाठशाला में अगणित अध्यापक नियत किए गए, परंतु मुख्य केवल यह है कि पंडित मुग्धमनी शास्त्री तर्कवाचस्पति प्रथम अध्यापक। इन पूर्वोक्तों पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे उस समय जब इष्ट मित्रों के सन्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर नष्ट कर देते हैं और जिसने विद्या शील भल के सिवाय मान मूर्खता पद्रोह परनिंदा आदि परम गुणों के इस संसार को विभूषित किया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा में सन्मुख अपने स्वर्गवास स्थित की प्रशंसा करते हैं जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। नहीं तो जब द्रव्य के खोज में समुद्र में डूबते डूबते बचे थे तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी, परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा से विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य की प्रवृत्त हुए। नहीं मैं दो हाथ पर वाला बेचारा मनुष्य अपने आगे कौन कीड़ा था जो इस दुष्कर कर्म को कर लेता। यहाँ तो केवल घर की मूंछे ही मूंछी है। मैं आज के दिन तो नियतता का प्रथम दिन मानता हूँ जो औरों के अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। हे सुजन शुभचिंतकों, संसार में पाठशाला अनेक हो गई, परंतु हरि कृपा से जो आप लोगों की सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है वैसी अचरज नहीं कि अपने इस जन्म में न देखी सुनी हो। होनहार बलवान है, नहीं कली में इस ऐसी पाठशाला का बनाना कठिन है। देखिए यह हम लोग ने भाग्य का उदाय है कि महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए जिनके सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजते फिरा अंत में हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं इनका नाम पंडित पांखट प्रिय है। किसी समय इस देश में अनेक बड़ी मानती सब स्त्री पुरुषों ने इन्होंने मोख रखा था, परंतु अब कालचक्र के मेरे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले, जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। इनसे भिन्न पंडित प्रणांत प्रदर्श भी प्रशंसनीय पुरुष है। जब तक इस घट में प्राण है तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। ये महावैद्य का नाम से इस समस्त संसार विख्यात है। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न होजिए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। शेष स्त्री शिक्षा का जो विचार था वह आज रात को हम घर पूछ ले तब कहेंगे। धन्यवाद।
2: आपने बहुत बढ़िया कहानी कहा है श्रीनिधि। आपकी कहानी से हमको प्रेरणा मिली है और बहुत अच्छी सीख मिली है। तो आपको ये कहानी का महत्व तो पता चल ही गया है आप लोगों को। तो आज हम कुछ लोगों से पूछेंगे कि उनका क्या विचार है हिंदी भाषा पर और उनका क्या महत्व रोजी जिंदगी पर, और बहुत कुछ जानेंगे, चर्चा करेंगे लोगों से। धन्यवाद।